0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरी'स मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरा 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
1: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
0: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
1: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
0: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
1: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
0: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
1: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
2: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7-8 PM, संडे 1-5 PM।
3: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड, स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIA एप्लीकेशन, फैमिली इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन विच लंबा तजर्बा महारत रखता है। तुहाड़ी सहूलत लई मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों अते इंद्रजोत कौर ढिल्लों इक्को छत हेठ इमिग्रेशन अते इंश्योरेंस दीआं सेवावां प्रदान करते हैं। सानू संपर्क करने लई 403-225-1111। मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड।

0: इस बारे कल उन्होंने डिटेल सारी दे दी है, मेरे सामने पई है। बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहता कि इतने पहला जो प्रिपरेटरी मीटिंग है, प्रेपरेटरी मीटिंग तो उन्होंने डिटेल देने की लोड़ नहीं कि ये वास्ते टीमां किदां तैयार करनियां ते किहड़ी तरीक तक उन्होंने ट्रेनिंग करवानी है, वो तो उन्होंने काम है। जनरल पब्लिक वास्ते उनकी डेट देने की कोई लोड़ नहीं। सब तो वड्डी गल जिहड़ी नोट करने वाली वो ये कि हाउस टू हाउस यानी हर एक घर जाने का काम जो है वो बूथ लैवल अफसर बी एल ओ जो ने वो 5 जून में शुरू करेंगे, अगले महीने के 5 तरीक न 24 जुलाई तक यानी पूरा एक महीना चलेगा। उदो घर घर जाके वोटा की पड़ताल करे कि इस घर के किन्ने जी वोटर ने उन्होंने जेडी वोटा बनिया वो ठीक ने कि गलत ने। कोई जिन्हों चो विदेश जाके बस गया वोट कटनी चाहिए, कोई विदेश चो इतने आ गया या कुड़ी व्याही गई है तो नवे थां जिथे गई उत्थे रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि इथों गई है, या जे कोई इतने कुड़ी व्याह के आ गई है तो उसके पिछले स्टेशन तो रिपोर्ट लेनी चाहिए। वो लोगों को घबराने की लोड़ नहीं, हुण सारा डाटा हर एक कंप्यूटर च होने करके लोग आप भी पुराने वोटों की लभ सकते हैं ते जिहड़े बी एल ओ जाणगे उन्हां दे कोल भी अपडेट्स होगा उत्थों खड़े पर लभ सकते हैं कि पिछली बारी तुहाडी पुराने थां ते पुराने बूथ ते वोट से आटा वोट नंबर से ड्राफ्ट लिस्ट है कच्ची खरड़ा सूची को 31 जुलाई जारी कर देंगे। उन्होंने वेखण तो बाद लोग चेक कर सकेंगे कि उन्होंने वोट बनी कि नहीं बनी, किसी तरीक ने शरारत करके कटाता नहीं दी, ये भी वेखणगे कि उन्होंने घर के एड्रैस के उत्ते किसी होर की वोट तो नहीं बन गई, जे बन गई तो क्यों बन गई है, और ये भी वेखणगे कि इतने किसी किसी आसे पासे एको घर दे जारियां वोटां नहीं, कोई जो शिकायत करनी हो शिकायतों का उन्होंने उत्ते अपने स्पष्टीकरण देने का काम 31 जुलाई तो ही शुरू हो जाएगा जिस दिन लिस्ट जारी होनी है, तो 30 अगस्त तक चलूगा एक महीना। उदो बाद 20 सितंबर तक जो कलेम है उन्होंने निपटारा होगा, तो 20 सितंबर तक सारा काम मुका के अक्तूबर की 1 तरीक न फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी ताकि लोग आपो अपनी लिस्ट जी वो वेख सकन चेक कर सकन संभाल सकन। तो बाद और किसी किस्म की गल नहीं होनी, जे उस लिस्ट में भी किसी का ना कटिया गया तो उन्होंने उतरा गया साडा कट दिता गया ये खिलाफ उन्होंने अदालत भी जाना है तो उन्होंने को पूरा और टाइम होगा जो टाइम वो वरत सकते हैं। ये सारा एस आई आर आ जिहड़ा हुण शुरू होने लगा 18 स्टेटा दे विच ते एक यूटी च होना दादरा ते नगर हवेली च, उदों बाद फिर 3 रह जाणगे, एक तो हिमाचल प्रदेश का पूरा स्टेट राज, दूसरा जम्मू कश्मीर राज हुंदा सी हुण तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरियां बढ़ातियां ने एक जम्मू कश्मीर ते दूसरे लद्दाख, उन्हां दा काम इह हिसाब ला के करना पै गया कि उत्थे बारिशां कदों हुंदियां ने उत्थे स्नोफॉल कदों हुंदी है ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਸਰੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
1: ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ 'ਤੇ। ਇਹ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ?
0: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਲੜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਇਸ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਔਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ

0: 0910 रेडियो सुरसंगम
1: दोस्तों डैन सिद्धू लाइव इन लोक साथ तुसी हर एतवार 5 बजे तो लेकर 7 बजे तक सुन सकते हो समाजिक आर्थिक ते राजनीतिक पक्ष दे मसले मिंटू गुरे सरिया तो पंजाब ते भारत दियां खबरां स्टूडियो नंबर 4717-1947
2: The following program speaks to the South Asian community uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio the multicultural spirit of Calgary CHKF 94.7 FM.
3: Three, two, one, zero.
4: Ladies and gentlemen, get ready to be a part of the hit Desi radio show with Sean. A complete audio magazine.
5: Sangeet
4: Studio.

Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal and good Friday to all of you. शाम के 5:02 हुए हैं 94.7 FM पर प्रोग्राम संगीत स्टूडियो मैं हूं शान. प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सुर संगम रेडियो. मई 15th है, साल का 135वां दिन और इस साल के 230 दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं. टेम्परेचर की बात करें तो वैनकूवर से भी हम बेटर हैं और टोरंटो से भी बेटर हैं. टोरंटो है 12 डिग्रीज और हमारे पास अभी 14 डिग्री था कोई एक दो मिनट पहले, पर आज विंड कम है, सूरज निकला हुआ है, ब्लू स्काईज हैं, सो इट फील्स इवन बेटर. स्कूल के जमाने में सिडनी शेल्डन पढ़ा था पहली बार और उनके नॉवेल्स में और चीजों के साथ साथ कभी कभी बहुत पंची लाइन्स मिलती थी. उनमें से एक लाइन मुझे आज तक याद है कि बीइंग पुअर इज ओनली रोमांटिक इन बुक्स, सिडनी शेल्डन ये कहते हैं. अगर आपको याद हो तो बॉलीवुड की पाकिस्तानी फिल्मों ड्रामों में एक बहुत लंबे अरसे तक गरीब हीरो दिखाते थे. अमिताभ की आप ज्यादातर फिल्में देखें तो यतीम, अनाथ और गरीब है, गुर्बत है, यू नो, खो गए हैं मेले में या बाप की डेथ हो गई है या दुश्मन ने, स्मगलर ने मार दिया है, अब सिंगल मॉम उनको पाल रही होती थी. अच्छा, ये अच्छा लगता था लोगों के कि जब कोई इंसान गरीब होता है, कमजोर होता है, और फिर वो जब बड़े बड़े स्मगलर्स को और रिच लोगों को और जालिमों को और पॉलिटिशियंस को मारता है, लड़ता है, झगड़ता है, तो ये रेलेवेंट लगता है ऑडियंस को. तो ये फार्मूला बॉलीवुड को मिल गया था कि जब हीरो गुर्बत से निकल के बड़े बड़े लोगों को मारता है या किसी अमीर आदमी की बेटी उससे प्यार करने लगती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है. बेसिकली वो उस हीरो के अंदर अपनी जिंदगी, अपने आप को देखते हैं, क्योंकि पॉवर्टी और गुर्बत वगैरह जाहिर है उन सोसाइटीज़ में बात थी. अब उसको इतना ग्लोरीफाई किया गया कि एक ज़माना ये लगा कि गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है. यू नो, आप अमिताभ लगते हैं, राजेश खन्ना लगते हैं, नदीम लगते हैं, मोहम्मद अली लगते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि ये सिर्फ फिल्मों में, नॉवेल्स में होता है. और यही बात सिडनी शेल्डन कहते हैं कि बीइंग पुअर इज ओनली रोमांटिक इन बुक्स. प्रोग्राम है संगीत, मैं हूं शान, आपको लेके जाना चाहता हूं आज के प्रोग्राम की पहली प्रेजेंटेशन की तरफ. एंड हु कुड बी बेटर देन द उस्ताद ऑफ द उस्ताद्स, नुसरत फतेह अली खान साहब.

0: call for free delivery.
1: Agar tum mil jao, zamana chhod denge hum.
0: Sorry, take ours only.
2: 403-612-6100. वेलकम बैक संगीत स्टूडियो 94.7 एफएम पे. 5 बज के हुए हैं 15 और मुझे एक लिस्टर ने कहा कि डेट का पता तो होता है लेकिन कई चीज़ें सिग्नेचर बन जाती हैं. जैसे आप यू नो हर प्रोग्राम की एक सिग्नेचर होती है तो मुझे पता चलता है आज डेट है और मुझे ये भी पता चलता है कि साल के कितने दिन बाकी हैं. हालांकि ये पता करना आजकल कोई मुश्किल काम तो है नहीं. बिल्कुल आपकी कॉज का, मशवरों का, तारीफों का बहुत बहुत शुक्रिया. टॉपिक ऑफ द वीक में आज बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो विजिट हुई है चाइना की, इस पर बात करनी है क्योंकि इतनी वीडियोस, इतना सोशल मीडिया, इतनी न्यूज़, गलत है, सही है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रल होकर उसको एनालाइज करते हैं क्योंकि हम अमेरिका में रहते नहीं हैं, हम चाइना में रहते नहीं हैं, हम किसी के दुश्मन दोस्त नहीं हैं. लेकिन बीइंग इंटरनेशनल सिटीजन ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि दुनिया में हो क्या रहा है, स्पेशली वो मुल्क जिनके फैसलों से हमारी जिंदगियां इफेक्ट होती हैं. कैसे इफेक्ट होती हैं? ईरान पे अटैक किया अमेरिका ने और बैठे हैं हम यहाँ कैलगरी में, गैस की प्राइस से ज़्यादा पे कर रहे हैं, सब्जियों की, टमाटरों की प्राइस से ज़्यादा पे कर रहे हैं. ये इस तरह से इफेक्ट करता है तो इसलिए हम लातालुक होके रह सकते नहीं हैं. ये बड़ा मुश्किल हो गया. सो डोनाल्ड ट्रंप साहब गए जी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप साहब की अब आप जान गए होंगे पिछले टर्म में भी, इस टर्म में भी, कि वो रात को सुबह 3 बजे के करीब ट्वीट करना शुरू करते हैं और हर 5 मिनट के बाद उनका एक ट्वीट. ट्वीट से मतलब ये कि उनका जो भी सोशल मीडिया है उस पर वो लगाते हैं हर 5-7 मिनट के बाद. वो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 12, 13, 14, 15 पोस्ट उनकी 3 से लेकर सुबह 5 बजे तक होती हैं और उसको अब ज़्यादा लोग सीरियस लेते नहीं हैं, ना तो अमेरिकन उसको.

ज्यादा सीरियस लेते हैं ना इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको ज्यादा सीरियस लेती है. फॉर एग्जांपल आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया में बात करते हुए कहा कि जो पीस टॉक हैं और यह है वो है वो किसी तरफ नहीं पहुंच रही क्योंकि अमेरिका ये करता है वो करता है. करते करते भी उन्होंने कहा कि आप कितना सीरियस ले सकते हैं जब इस तरह के मिक्स मैसेजेस आ रहे हों कि एक मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो पांच मिनट पहले कुछ ट्वीट कर दे, अगले पांच मिनट बाद कुछ कर दे, उसके अगले पांच मिनट बाद कुछ और कह दे, पांच मिनट पहले कह दे कि टॉक्स बहुत अच्छी जा रही हैं, जंग खत्म हो गई है, हमने चीजें अचीव कर ली हैं, पांच मिनट बाद कह दे कि एक पूरा सिविलाइजेशन में खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा, तबाह कर दूंगा, फिर उसके सात मिनट बाद कुछ और कर दें. तो ये अब जाहिर है दुनिया इसको ज्यादा कोई सीरियस होती नहीं है, इम्यून होती जा रही है, कंडीशन होती जा रही है. कमिंग बैक टू प्रेसिडेंट ट्रंप, जब ये आए थे तो उन्होंने कहा जी छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे, कनाडा को ये कर देंगे, बाकी कंट्री को, पूरी दुनिया ने बड़ा एडवांटेज ले लिया, टैरिफ लगा दिए, चाइना को तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. सबको ये पता था कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का एक खास सिग्नेचर स्टाइल है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. बड़े मुल्क चाइना को तो छोड़ें, कनाडा को कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारी इकॉनमी कैलिफोर्निया से छोटी. कैलिफोर्निया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनकी जो लार्जेस्ट इकॉनमी वाली स्टेट है, उसकी इकॉनमी दुनिया में जो रिच तरीन अमीर तरीन सात मुल्क हैं उनमें जर्मनी और जापान को छोड़ के बाकी सारे मुल्कों से उसकी इकॉनमी बड़ी है. ये तो एग्जांपल देने वाली बात है. लेकिन कनाडा को फर्क नहीं पड़ा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने डिवर्सिफिकेशन के चक्कर में पूरी दुनिया को एंगेज किया, मिडल ईस्ट को, फार ईस्ट को, सेंट्रल अमेरिका को, यहां वहां यूरोप को, और हमने जो दबदबे में आना था, रोब में आना था अमेरिका के, नहीं आए. पिछले छह महीने से टॉक्स नहीं हो रही, प्राइम मिनिस्टर कार्नी कहते हैं कि नहीं हो रही, तो नहीं हो रही. कनाडा को यह है कि बैड डील से बेहतर है कि नो डील, नहीं हो रही. तो इसका मतलब यह है कि कोई आपको ज्यादा मानता नहीं. अब चाइना का तो खैर आप छोड़ ही दें, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है इस वक्त 21 ट्रिलियन की कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के जो संजीदा सीरियस कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि चाइना की इकॉनमी 21 से बड़ी है. लेकिन चाइना का ये स्टाइल है कि चाइना कम शो करता है, यानी चाइना की जेब में अगर दो रुपए हों तो चाइना एक रुपया बताता है. दिस इज हाउ ट्रेडिशनली दे आर, एंड ये उनकी एक तरह से स्टाइल है उनका. अमेरिका दूसरी तरफ बड़के बल्ले बल्ले शाबा शाबा, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हंगामा कर देंगे, आपको पता नहीं हमारे पास कैसे जेट्स हैं, कैसे फाइटर हैं, कैसी हमारी नेवी है, कैसी आर्मी है, ये आप रोज सुनते हैं. और आम लोगों से नहीं, पीट हेग्सिट से सुनते हैं जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर से सुनते हैं, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप से आप ये सुनते हैं, तो ये वो बातें करते हैं. चाइना ऑन द अदर हैंड टोटली ऐसा है कि चाइना के पास अगर दो रुपए हैं तो एक बताता है. ये उसका पिछले को 50 साल से यही चल रहा है. तो जो न्यूट्रल कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि चाइना की इकॉनमी 21 ट्रिलियन की नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन वो छुपा के रखना चाहते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते. ये तो खैर एक चीज है. दूसरी चीज ये है कि चाइना के बारे में एक कार्टून रिसेंटली मैंने देखा कि चाइना जब गाड़ियां नहीं होती थी तो फर्ज करें जब पहली गाड़ी टोयोटा बनी होगी तो माई गॉड गॉब्स्मैक जिसे कहते हैं, माइंड ब्लोइंग चीज होती होगी कि चार व्हील घूमते हैं गाड़ी के अंदर, आप बैठते हैं चलती है, लोगों ने सिर्फ खच्चर पे घोड़े पे सफर किया था. बिल्कुल इसी तरह आज के जमाने में चाइना एक फरारी कार है और बाकी सारी जो हमारी टोयोटा ग्रुप है दुनिया की, इंक्लूडिंग अमेरिका, जो भी बंदा चाइना जाता है, जो फॉलो करता है, विजिट करता है, अमेरिकन, बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, वो जिस तरह की वीडियोस, जिस तरह की प्रोजेक्शन, जिस तरह पे यूट्यूब पे अपने प्रोग्राम्स दिखाता है, गलियां, बाजार, टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोट्स, ट्रेनें, जहाज, एयरपोर्ट्स, वो ऐसा लगता है कि कोई साइंस फिक्शन मूवी आप देख रहे हैं. इस तरह से है चाइना के हालात. और अब चाइना को जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई जाता था या बुलाते थे तो हमेशा एक एरोगेंस होती थी, एक अपर हैंड होता था, यू नो अमेरिका इज अमेरिका. पहली बार पूरी अमेरिकन मशीनरी, पूरी अमेरिकन जो मैनेजमेंट कह लें आप, प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम जो गई थी, पहली बार उनसे हर एक से वर्ड कोऑपरेशन सुना कि कोऑपरेट करेंगे हम चाइना से, चाइना का कोऑपरेशन हमें चाहिए इस मामले उस मामले में, हम इकोनॉमी में कोऑपरेशन करेंगे, हम इंटरनेशनल ट्रेड में, पॉलिटिक्स में करेंगे, हम एआई में करेंगे. कोऑपरेशन जब आता है जब पार्टीज आपको इक्वल समझना शुरू करते हैं. जब तक आप इक्वल नहीं होते तो कोई भी कोऑपरेशन का वर्ड यूज नहीं करता. तो ये पहली बार एक तो ये वर्ड सुनने को मिला और इस वर्ड के पीछे बड़ी डेप्थ है. इसका मतलब ये कि खुद अमेरिका के पास अब कोई चॉइस नहीं है अदर देन एक्सेप्टिंग चाइना इज अ सीरियस बिग प्लेयर, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बड़ा प्लेयर कुछ शोबों में, अमेरिका से भी बड़ा प्लेयर. एक तो ये चीज हुई. दूसरा ये हुआ कि अगर आपने वीडियोस देखी हो तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लोग थे जैसे पीट हेग्सिट और फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो लोग बड़े बड़े ट्रेड के बिजनेस वाले लोग, ट्विटर के मालिक और एलन मस्क और दूसरे लोग थे सारे, टिम कुक

एग्जांपल, ये सारे आप देखें कि जहाज से उतरने के बाद परेड के दौरान, मीटिंग्स के दौरान, जो उनका मेन हॉल है उसके वीडियोस बनाते रहे. मतलब लिटरली आप बच्चों की तरह वीडियो नहीं बनाते. फर्ज करें मैं पहली बार अगर पेरिस जाऊंगा तो मैं एफिल टावर की ऐसे वीडियो बनाऊंगा, या कोई पहली बार नियाग्रा फॉल देखेगा तो ये छत की वीडियो बना रहे हैं, इधर वीडियो उधर वीडियो. जो एलन मस्क हैं वो तो हर बार वीडियो बनाते नजर आए, यानी इतने वो ओवरवेलम थे चीजें देखने के बाद और टेक्नोलॉजी देखने के बाद और लुक देखने के बाद और वो सारा, कि आपको उससे ये पता चलता है दैट दे आर नॉट जस्ट इम्प्रेस्ड, दे आर सरप्राइज्ड. दूसरी चीज ये हुई. तीसरी, जो एक्सपर्ट बॉडी लैंग्वेज और कपड़े और बातचीत और फलाना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार हुआ कि जो चाइना के साथ जो डिस्प्यूट वाली बातें कोई भी किसी भी तरह की वो नहीं की. उन्होंने किसी बात का बिल्कुल जिक्र भी नहीं किया, हल्का सा भी जिक्र नहीं किया. और उसका मतलब यह था कि कोई बदमजगी वो नहीं चाहते थे. ठीक है, जब उनसे पूछा भी कि आपने ये क्यों नहीं इस तरह की बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं की. ठीक है, 500 प्लेन खरीदने थे चाइना से, अमेरिका से, कहा था चाइना ने बहुत पहले, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब ये कहा कि हम सिर्फ 150 लेंगे, हम 500 नहीं लेंगे. प्रेसिडेंट ट्रंप ने वापस आने के बाद जो पहला इंटरव्यू दिया है उसमें ये इसको स्पिन दे ये दिया कि वो तो 200 लेना चाहते थे, लेकिन जो अमेरिकन बिल्डर है जो बनाने वाला प्लेन, वो 150 के लिए तैयार है. यानी 500 कहीं पीछे चला गया, उसको और तरह का स्पिन दे दिया. फिर ये चीज़ हुई. फिर रेड कारपेट पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे मिलने आए तो उनका जो हाथ हैंडशेक है उसको लेके पूरे पूरे प्रोग्राम्स हैं कि ऊपर वाला हाथ किसका था, नीचे वाला हाथ किसका था. जो प्रेसिडेंट शी थे उन्होंने हाथ ऊपर रखा और दूसरा हाथ नहीं लगाया, सिर्फ एक हाथ से हैंडशेक किया, दूसरा हाथ बिल्कुल उठाया नहीं. जैसे नॉर्मली जब आप हमारी जो सोशल क्लासें होती हैं, तो अगर आप जो आपसे बेहतर क्लास का बंदा जो हाथ मिलाएगा तो आधा हाथ मिलाएगा, एक हाथ मिलाएगा, लेकिन जो उससे थोड़ा गरीब या किसी भी तरह से कमतर होगा वो दोनों हाथों से बड़ा हाथ हिला हिला के मिलेगा, बिकॉज वो एक क्लास का डिफरेंट होता है और साइकोलॉजी इसको एक्सप्लेन करती है. तो प्रेसिडेंट शी ने दूसरा हाथ नहीं लगाया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हाथ और दोनों से हाथ हिलाते रहे. दूसरा काम, प्रेसिडेंट ट्रंप का एक सिग्नेचर मिलना है, हग करना है, लोगों के साथ हैंडशेक करना, जिसमें बड़े जोर से अपनी तरफ खींचते हैं जबकि जब भी वो किसी प्रेसिडेंट से मिलते हैं या प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं. उन्होंने खींचने की कोशिश अपनी तरफ की, जैसे वो बहुत हिलाते हैं हाथ को खींच के, शोल्डर को बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन प्रेसिडेंट शी अपनी जगह से बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहे. दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. और जो तीसरी चीज थी, नॉर्मली ये होता है कि जो रेड कार्पेट का एरिया होता है जहां मीडिया खड़ा होता है, तो दोनों लीडर्स एक दूसरे की तरफ इक्वली स्पीड में या इक्वल रफ्तार में बढ़ते हैं. यानी मैं अगर हाथ मिलाने के आगे बढ़ाऊं तो दूसरी तरफ से जो दूसरा लीडर है वो भी फ्यू स्टेप्स लेता है और मिडल में हाथ मिलाते हैं. ये एक यूनिवर्सल रूल है और इसे कर्टसी भी कहा जाता है. लेकिन अगर आप वो वीडियो देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 या 5 स्टेप लिए और प्रेसिडेंट शी जहां खड़े थे उन स्टेप से बिल्कुल मूव नहीं हुए, नॉट इवन अ सिंगल स्टेप हाथ मिलाने के लिए. अच्छा, ये एक और चीज है, और ये सारे मैं कोट कर रहा हूं आपको अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो हैं, कैनेडियन एक्सपर्ट्स जो हैं. ये तीसरी चीज थी. तो ये तीन बड़ी चीजें जो है ना, ये इतनी इतनी मेगा थी. उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने जितनी तारीफें की प्रेसिडेंट शी की, इतनी तारीफें उन्होंने की कि मुझे तो सीरियसली कभी मुझे नहीं लगता रिसेंट हिस्ट्री में अमेरिकन जो एरोगेंस है वो आपको पता है कि कितनी है, लेकिन मैंने नहीं सुना कभी दूसरे कंट्रीज दूसरे लोग तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट शी ने इस तरह की कोई तारीफ बिला वजह की. हालांकि वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप लाइक्स यू नो बीइंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड आई मी माइसेल्फ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब में उस तरह की तारीफ, उन्होंने ये कहा कि हम मिलके काम कर सकते हैं. लेकिन एक दो वार्निंग उनकी स्पीचेस में थी, जो भी प्रेजेंटेशन होती रही, स्पीचेस होती रही, उसमें प्रेसिडेंट शी ने यह कहा कि चाइना ग्रो करना चाहता है और कर रहा है, लेकिन हमारी ग्रोथ में एक्सेप्ट करने की बजाय कोई रुकावट बनेगा, मतलब उसका यह था, तो वो हमारे साथ सीधा मत्था लगाएगा, जिसे कहते हैं कि हमारे साथ वो सामने होगा हमारे. और फिर उन्होंने कहा कि इस दुनिया में, इस जगह पे दोनों के लिए ग्रोथ की जगह है, हर मुल्क के लिए ग्रोथ की जगह है, तो ये सोचना कि कोई और आगे ना बढ़ सके ये बहुत ही फजूल किस्म की बात है. और तीसरी बात, ताइवान को लेकर प्रेसिडेंट शी ने ये कही कि ताइवान के बारे में कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई हरकत होती है, ये मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जवाब में ये हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप से चाइना में भी पूछा गया उनसे कि आपने ताइवान के बारे में बात नहीं की, तो उन्होंने कहा कि नहीं की. फिर उनसे जहाज में पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं की. फिर वो वापस अमेरिका आ गए, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने नहीं की. फिर उनसे ये पूछा गया कि आपने जो एमुनेशन ड्यू है साइन

साइन करते ही वो ताइवान को जाएगा असला एमुनेशन वो आपने उस पर अभी तक साइन नहीं किया है तो उन्होंने कहा कि आई थिंक अबाउट इट इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि उन्होंने क्यों नहीं किया तो अब चीज़ें चाइना की रिक्वेस्ट से निकल के उस तरफ चली जा रही हैं कि जहाँ पर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ताइवान को एमुनेशन वगैरह कंटिन्यू रहता है चीज़ों का अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इस विजिट के बाद जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें थी उन पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई मसलन जो टैरिफ लगाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ तो लगा दिया 30% टैरिफ 40% ये वो चाइना के बारे में लेकिन उस टैरिफ पे कोई बात नहीं कि ना चाइना कहता है उसे हटाएं ना चाइना कहता है उसे लगाएं लेकिन चाइना ने उसे इररेलेवेंट कर दिया टोटली इररेलेवेंट कर दिया चाइना को जो दुनिया की चीज़ें चाहिए अमेरिका से वो बाकी मुल्कों से वो खुद बना रहे हैं बाकी दुनिया से ले लेता है स्पेशली कोई रॉ मटेरियल टाइप की चीज़ अगर चाहिए अमेरिका के लिए ऑन द अदर हैंड बहुत मुश्किल है क्योंकि अमेरिका को चाइना से बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए ऐसे अर्थ मिनरल्स चाहिए जो उसे कहीं और से नहीं मिल रहे चाइना ने पिछले साल प्रेसिडेंट ट्रंप से जब उनकी मुलाकात मलेशिया में हुई थी तो एक साल के लिए जवाब में पाबंदियां हटाई थी उन अर्थ मिनरल्स पे अमेरिका के लिए फॉर वन ईयर और वो वन ईयर अब पूरा होने वाला है लेकिन इस मीटिंग में कोई उसका जिक्र नहीं आया कि वो उस पर पाबंदियां हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे तो वो जिसे कहते हैं कि वन साइडेड आप एक्शन अमेरिका ने लेके वन साइडेड ही पीछे हटते चले जा रहे हैं अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइना हैज अराइव्ड चाइना यहां है और यहां से आगे जाएगा ये अब किसी को सुपरफिशियल सोच नहीं होनी चाहिए कि ये कोई यूनिपोलर वर्ल्ड है ये यूनिपोलर नहीं है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई है रशिया फौजी पावर है बहुत बड़ी चाइना फौजी टेक्नोलॉजी इनोवेशन और इकोनॉमी हर चीज़ में अमेरिका के हम पल्ला है और अमेरिका तो है ही है तो इसलिए किसी के जहन में अगर ये ख्वाब ख्याल है कि ये कोई यूनिपोलर दुनिया है ऐसी है नहीं और इससे अच्छी चीज़ ये है कि इस दुनिया के लिए कि ऐसी सिचुएशन में पीस रहता है डिटरेंट रहता है कोई एक मुल्क बदमाशी अपनी मर्जियां या दुनिया को जिस पे कर चाहो अटैक कर दो हमला कर दो ये कर दो वो कर दो उसकी एरोगेंस कोई भी मुल्क हो नीचे चली जाती है देखिए यू लाइक चाइना और यू डू नॉट हमें फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका का भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें मैटर करता है कैनेडा हम यहाँ रहते हैं कैनेडा ग्रो करे अच्छा मुल्क रहे जिससे हम इफेक्ट होते हैं लेकिन दुनिया के अंदर जाहिर है ये मुल्क हैं और इनके जो फैसले हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं अमेरिका को अगर आप देखें पिछले 50 सालों में तो इतने मुल्कों पे हमले इतने अटैक्स इतनी रिजीम चेंजेस इतनी इंटरफेरेंसेस आपको मिलती हैं चाइना की आपको कोई ऐसी किसी तरह की एग्जांपल अभी तक नहीं मिलती और ये एक जिसे कहते हैं कि एक फैक्चुअल चीज़ है कि नहीं मिलती और अभी भी वो किसी को थ्रेट करना किसी पर हमला कर देना अदर देन के ताइवान वो कहता है कि मेरा हिस्सा है वो रहेगा और जो उसकी एक इंडिपेंडेंस थोड़ी बहुत है उस पर वो एग्री हैं लेकिन कोई मुल्क उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करे और उसको असलहा दे और उसको ज़्यादा चाइना के ख़िलाफ़ करे ये वो बर्दाश्त नहीं करेगा अदर इसके अलावा उसकी कोई और चीज़ नहीं है और फिर चाइना की वजह से जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है पूरी दुनिया में कैनेडा में अमेरिका में आपकी जो 70-80% प्रोडक्ट्स आप ख़रीदते हैं इधर होली या पार्टली वो चाइना से आती हैं बनती हैं या कुछ चीज़ें यहाँ बनती हैं कुछ वहाँ से आती हैं आप ईवी की एग्जांपल ले लें कि जो गाड़ियाँ आपको 60-70-80 हज़ार की मिलती हैं वो आपको 35 हज़ार में मिलेंगी आप चूंकि चाइना से गाड़ियाँ कनाडा ने साइन किया है तो आना शुरू हो जाएंगी वही पुराना प्रोपेगेंडा आपको मिलता है कि वो गाड़ियाँ पता नहीं क्या वीडियो बना लेंगी क्या आपको ट्रांसमिट कर देंगी आपका डाटा देखिए पूरे यूरोप में वो गाड़ियाँ हैं पूरे एशिया में वो गाड़ियाँ हैं सेंट्रल अमेरिका में वो गाड़ियाँ हैं कनाडा चूंकि हम अमेरिका की वजह से अमेरिका की लाइन टो करते हैं और अमेरिका जाहिर है एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करता है दो रीज़न एक तो ये है कि वो नहीं चाहते कि चाइना की जो कंपैरेटिवली चीपर गाड़ियाँ हैं वो मार्केट में आए छा जाएं और चाइना को उसका बेनिफिट हो दूसरा जो टेस्ला है वो अमेरिकन ब्रांड है तो उस अमेरिकन ब्रांड को प्रोटेक्ट भी वो करना चाहते हैं लेकिन सीरियसली जो 70-80 हज़ार की गाड़ी है जब आपको 35 हज़ार की मिलेगी अभी कुछ महीनों तक रोड पे आपको कनाडा में गाड़ियां नजर आना शुरू हो जाएंगी चाइना की ईवीज एंड आपको अंदाज़ा होगा कि कितने ऑलमोस्ट आधे से कम पैसों में आपको गाड़ियां मिल रही हैं विद मोर फीचर्स एंड बेटर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन तो ये तो सारी चीज़ें थी जी प्रेजिडेंट ट्रंप का विजिट टू अमेरिका और रेड कारपेट से लेके पहुंचने से लेके वापस आने तक की आपको एक स्नैपशॉट मैंने आपको दिया है एंड आई होप आपको मेरे साथ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि वेयर दिस वर्ल्ड इज हेडिंग May 15th, 2026 शाम के 5:33 हुए टेम्परेचर है 13 डिग्रीज कैलगरी में संगीत हर फ्राइडे को आप सुनते हैं मैं हुशान आपको लेके जाना चाहूंगा एक बड़े ही खूबसूरत से गाने की तरफ राइट हेयर इन संगीत स्टूडियो

anymore. A lot more. Keep listening. Sangeet Studio. वेलकम बैक संगीत स्टूडियो में एक बार फिर आपको खुश आमदेद. क्या कहते हैं जी आयान. ठीक है, दो तीन न्यूज एलिमेंट्स पे बात कर लेते हैं जी. कर्नी स्मिथ रीच एनर्जी एग्रीमेंट दैट कुड सी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इन 2027. ये खबर छाई हुई है आज प्राइम मिनिस्टर कर्नी कैलगरी में थे और प्रीमियर डैनियल स्मिथ के साथ उन्होंने साइन किया है वंस अगेन. और ये आज मेन स्ट्रीम मीडिया में हर तरफ ये खबर लगी है कि 2027 यानी 26 से ये तो नेक्स्ट ईयर के फॉल तक नई पाइपलाइन जो ऑयल एंड गैस को वेस्ट कोस्ट पे लेके जाएगी बीसी में उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है. और बहुत सारे जो गवर्नमेंट की ऐसी रेगुलेशन से फेडरल गवर्नमेंट की उनको दूर किया जा रहा है और उससे आसानी हो जाएगी कि इसको बिल्ड किया जाए और जो नेटिव कम्युनिटीज हैं उनके साथ

0: कंसल्टेशन शुरू हो चुकी है. प्रीमियर बहुत खुश हैं अल्बर्टा की, कैबिनेट बहुत खुश है, अल्बर्टा वाले बहुत खुश हैं कि ये होना चाहिए. दूसरी तरफ जो एनवायरमेंट्स के रिलेटेड लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली हम जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है उससे दूर होते चले जा रहे हैं. और जो बीसी के प्रीमियर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो कार्नी साहब जो कर रहे हैं दिस इज लाइक रिवॉर्डिंग अ बैड बिहेवियर. ठीक है जी. और इसको इसका मतलब ये है कि आप कोई बच्चा शरारती होता है वो बैड बिहेवियर करता है तो आप उसकी हर बात मान लेते हैं. तो अल्बर्टा चूंकि ब्लैकमेल कर रहा है सेपरेशन को लेके, रेफरेंडम को लेके इस तरह से, तो आप उसकी बात मान गए. ये बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि बीसी से ये पाइपलाइन गुजरेगी और कोस तक जाएगी. वो भी अपनी जगह सही है, एनवायरमेंट वाले भी अपनी जगह है, और मैं सच्ची बात आपको बताऊं प्राइम मिनिस्टर कार ने भी अपनी जगह. दुनिया में कोई फैसला जो होता है ना वो आइसोलेशन में नहीं होता, वो कोई खला में नहीं होता, कोई स्पेस में नहीं होता, ग्राउंड रियलिटीज पे होता है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है. जो टैरिफ्स लगे और इकोनॉमी का जो हाल अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा का किया, पहली चीज. दूसरी उसकी मजबूरी है. दूसरी चीज यह है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्पेशली ऑयल एंड गैस, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है और अभी ये रहेगी बहुत अरसे तक. इस प्लेनेट पे अगर और मुल्क, मिडल ईस्ट, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, रशिया, यूरोप, अगर बाकी मुल्क एनवायरनमेंट के बारे में अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सॉफ्ट रख रहे हैं तो एक मुल्क कनाडा जिसकी पॉपुलेशन एक शहर के बराबर है, सीरियसली दुनिया में ऐसे शहर हैं जो 4-4 करोड़ के बेसिकली, तो अगर वो एनवायरनमेंट पे इतना ज्यादा काम कर भी ले और अपने रिसोर्सेज को होल्ड रखे, अपने रिसोर्सेज को ग्रो होने ना दे कि भाई एनवायरनमेंट खराब होगा, तो वो कोई जस्टिफाइड बात नहीं है. ये यस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग इज इम्पॉर्टेंट, पर बात ये है कि पूरे गांव को उसकी फिक्र करनी है. पूरे गांव के सारे लोग लकड़ियां जला के अगर अपनी हीट ले रहे हैं और एक घर लकड़ियां ना जलाए तो जाहिर है ये कोई जस्टिफाइड चीज नहीं है. एक तो ये, दूसरा ये रिसोर्सेज बहुत कम मुल्कों के पास हैं, और अगर कनाडा के पास रिसोर्सेज हैं तो उन्हें यूज होना चाहिए, करना चाहिए. बट यस, सब्जेक्ट टू रिस्पांसिबल डेवलपमेंट, कि एनवायरनमेंट को जितना मुमकिन है उसका ख्याल रखा जाए और इसे डेवलप किया जाए रिस्पांसिबिलिटी के साथ. बट यस, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जॉब्स एंड फॉर इकोनॉमी और फॉर कनाडा. ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन अब हो रही है तो बहुत अच्छी बात है. प्राइम मिनिस्टर कार्नी की अच्छी बात यह है कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों में नहीं पड़ते. अब ये जो रेफरेंडम को लेकर, सेपरेशन को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कार्नी उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलते. जब उनसे बहुत ज्यादा कॉर्नर भी करते हैं उसको मीडिया वाले, तो वो बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत फाइन लाइन पे बात करते हैं. कल उनसे ये पूछा गया कि ये रेफरेंडम और सेपरेशन और ये सारी चीजें जो चल रही हैं उस पर, तो उन्होंने कहा कि अल्बर्टा के लिए बेस्ट प्लेस कनाडा में है. 100 बातों की एक बात, इससे ज्यादा अच्छी बात की नहीं जा सकती. दूसरी तरफ जो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, अमेरिका है और दूसरे मुल्क हैं, और स्पेशली ये जो 51st state का जो नैरेटिव है और फिर सेपरेशन का जो नैरेटिव है, इसको लेके आपको मीडिया में ऐसी लैंग्वेज नजर आती है जो कि आपको बताती है कि इसके पीछे कोई चीज है. फॉर एग्जाम्पल, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज खबर लगाई है कि अल्बर्टा ने कनाडा के साथ पाइपलाइन का साइन किया. ये ऐसा लगता है जैसे दो मुल्क साइन कर रहे हो, यानी अमेरिका ने और कनाडा ने साइन किए, रशिया और चाइना ने साइन किए. ये ऐसा कभी होता है कि आप ये कहें? ये हो सकता था कि अल्बर्टा ने फेडरेशन के साथ, अल्बर्टा ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ और ऑटवा के साथ साइन किया. अल्बर्टा ने साइन किया कनाडा के साथ. ये कनाडा विदाउट अल्बर्टा तो नहीं है ना, कनाडा इज अल्बर्टा. सो आपको ये जो लैंग्वेज है मीडिया की उससे पता चलता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट किस तरह से एक्टिव हो चुके हैं और किस तरह से इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है. तो अच्छी चीज ये है कि ये साइन हुए हैं, एंड अच्छी चीज ये है कि इस पर डेडलाइन रखी है, और अच्छी चीज ये है कि इससे बहुत सारी जो नेगेटिव पावर्स हैं, कुवतें हैं अल्बर्टा के अंदर, वो तोड़ने वोड़ने की बातें करती हैं, वो डिस्करेज होंगी और लोगों को ये समझ आएगी. सच्ची बात ये है कि आप जिससे भी बात करें, स्पेशली पीपल लाइक अस हू केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, आई लव दिस कंट्री. और हम उस कनाडा में आए हैं जो यूनाइटेड है, जो खूबसूरत है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आप ट्रैवल करते हैं. ये तोड़ना वोड़ना और ये करना, स्पेशली जो साउथ एशियन है ना, हम ये तोड़ने वाली चीज़ें बहुत देख चुके हैं. हमने, हमारे फैमिलीज ने, हमारे पेरेंट्स ने 47 में तोड़ना छोड़ना देखा था, और उसके आप देखेंगे नतीजे जब भी भुगत रहे हैं, और अभी भी उसके बाद जो है ना, फिर और तोड़ना और इधर की आज़ादी चाहिए और उधर की चाहिए. वो हमसे ज़्यादा सफ़र किसी ने नहीं किया हमारे जो फोरफादर्स से, तो इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इट्स अ यूनाइटेड, खूबसूरत, नाइस कंट्री है और हम उस कंट्री में आए थे. प्रोग्राम है संगीत, मैं हूं शान. ऐसा करते हैं कि एक प्रोमो के बाद आपको प्रोग्राम की अगली प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं.
1: Your choice, your voice. Zara Vakri type ki presentation. Full of masti, full of information. Program is being presented by Sean. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.

sit back, relax, and fasten your seatbelts. This is going to be a hell of a ride. एकदम चिकास, hey बिड़ो, चिकास बोले तो एकदम धांसू. धांसू बोले तो cool है. वेलकम बैक 94.7 FM पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं संगीत. कुछ क्विकली छोटी न्यूज पे बात कर लेते हैं. कनाडा की स्टॉक मार्केट्स आज थोड़ी सी 1% नीचे आई थी क्योंकि जो मिडल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी है उस पर कोई फैसला कोई चीज आगे नहीं आ रही और लॉन्ग वीकेंड है तो अब जाहिर है अगले 3 दिन तक तो कुछ पता नहीं. तो आज जो सारी ट्रेड मार्केट्स थी वो सारी इस एंटिसिपेशन में कि पता नहीं क्या होना और कब होना है क्योंकि ऑयल एंड गैस की प्राइसेस नीचे आने का नाम नहीं ले रही बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और अल्बर्टा में आपको पता है कि कोर्ट ने कल फैसला किया था कि जो रेफरेंडम है वो गो अहेड नहीं हो सकता. और जो इलेक्शन कनाडा का इलेक्शन अल्बर्टा का जो डाटा चोरी हो के कह लें या मिसयूज उसका हो रहा है स्पेशली सेंचुरियन प्रोजेक्ट यानी जो सेपरेशन चाहते हैं वो लोग उसको यूज कर रहे हैं और उसमें ना सिर्फ लिबरल और एनडीपी अपोजिशन नैन्शी या दूसरे लोग बल्कि खुद कंजर्वेटिव के अंदर जेसन कैनी जैसे सीनियर लोग और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये खतरनाक है, डेंजरस है, इररिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं होना चाहिए था. तो मोस्टली लोगों का जो वोटिंग अच्छा लोग इसको समझते हैं कि जैसे येलो पेजेस की तरह मेरा नाम और फोन नंबर, ऐसा नहीं है. आपका जो वोटिंग डाटा है वो बहुत सेंसिटिव और हसास है. उसमें आपका फोन, आपका एड्रेस, आपका नाम, आपके फैमिली की डिटेल्स, आपके वोट किधर जा रहे हैं टाइप की उसके अंदर बहुत सारी फर्दर डिटेल्स हैं. इट्स नॉट जस्ट अ नेम एंड अ फोन नंबर. ठीक है, यूक्रेन पे अटैक हुआ है, रशिया ने फिर किया, ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और जवाब में अब यूक्रेन जो है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर रिटेलियोटरी स्ट्राइक्स आफ्टर रशिया जी बम्बार्डमेंट और उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. इस जंग को लेके भी अब बहुत सारी आवाजें ऐसी भी उठना शुरू हो गई हैं कि ये जाहिर है ये जंग की जरूरत ही नहीं थी, ये होनी नहीं चाहिए थी और अब बिलियंस ऑफ डॉलर दे दे के मुल्क थक गए हैं और जंग किसी तरफ नहीं जा रही. सबसे जो बड़ी आवाजें और सीरियस आवाजें उठ रही हैं वो ज़ेलेंस्की के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो प्रेजिडेंट हैं यूक्रेन के उनके खिलाफ अब उठना शुरू हो गए हैं क्योंकि एक एक करके उनके 2-3 कैबिनेट के जो मेंबर्स हैं, वजीर हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनकी करप्शन पकड़ी जा रही है और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर से मिल रहे हैं लोग अब इम्यून हो गए हैं, कंडीशन हो गए हैं और वो पैसा इधर उधर चोरी भी कर रहे हैं. सारे नहीं बट दीज आर द रिपोर्ट्स एंड लोग इसके बारे में कंसर्न है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है. और दूसरा ये कि इस जंग को कंटिन्यू रखने से किस किस का फायदा है, कौन सी कंपनियां हैं हु आर मेकिंग मनी ऑफ दिस वॉर, असलाह बेच के, बंदूकें बेच के, गोलियां बेच के या करप्शन करके. सो इट इज बिकमिंग अ सीरियस इशू नाउ. वो जो शुरू में हमदर्दी थी एक वो हमदर्दी की जगह अब लोगों का फ्रस्ट्रेशन आता चला जा रहा है. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने नई स्किल्ड ट्रेड्स के लिए इनिशिएटिव शुरू किया है. उनका यह है कि वर्कफोर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसमें ट्रेनिंग और जो ट्रेड्समैन है उनको ट्रेनिंग देने के लिए देयर विल बी मोर देन $1 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे ताकि ये डिमांड, ये जरूरत पूरी हो सके इनकी. प्रोग्राम में संगीत, टाइम बड़ा तेजी से गुजरता चला जा रहा है. आज

6 मई 15 साल का 135वां दिन है, 230 दिन इस साल के बाकी हैं, 13 डिग्री है कैलगरी और कैलगरी के आस पास। मैं हूं शान, आपको आज के प्रोग्राम की आखिरी प्रेजेंटेशन। अच्छा, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब चूंकि इतनी डिमांड आ गई है एकदम से इस शाज़े मंजूर के एक और गाने की, तो आपकी नज़र करता हूं मैं।

0: पहले कभी रुका है ना आज रुकेगा. आई विश ऑल ऑफ यू लव पीस रिस्पेक्ट हेल्थ एंड वेल्थ. आपसे मुलाकात होगी अगले फ्राइडे को इसी टाइम इसी चैनल पे. फिर आएंगे घर. खुदा लाया.
1: शुक्रिया. आपने संगीत स्टूडियो ट्यून किया. शुक्रिया.
2: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.